सच्चनाम सच्चनाम सच्चनाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य।